0: और बच्चा बच्चा जानता है कि ब्रह्मा जो है बुद्ध का नाम है, विष्णु बुद्ध का नाम है, राम बुद्ध का नाम है, भगवान बुद्ध किसी बुद्ध को कहते हैं, ये सारे के सारे नाम जो है ये बातल महबूद के लिए टाइटल बन चुके हैं, पहचान बन चुके हैं। तो किसी के लिए जायज नहीं कि जब भी अल्लाह ताला को पुकारना चाहे, अगर अल्लाह का नाम लफ्ज लेना चाहते तो अल्लाह ही के लफ्ज से पुकारे, अगर तर्जमा को लेना चाहते तो वो तर्जमा इस्तेमाल करे, वो अल्फाज इस्तेमाल करे जो किसी बातल महबूद की पहचान न बन चुके हों किसी जमाने में भी। वल्लाहु अलम। कोई सवाल?
1: अल्लाह ने सब नामों जितनी है सब अल्लाह में आ रहे हैं। तो यार ने जो बातें बताया कि लोग अल्लाह अल्लाह हो कहते हैं ये नहीं कहना चाहिए, जब शफात इसमें खोली जाता है तो अल्लाह की खाली कहने में हर्ज है।
0: अल्लाह के खाली कहने में भाई कहे सवाल है कि अभी मैंने कहा कि अल्लाह ताला का नाम जो वो हर सिफत को शामिल है, हर सिफत कमाल को शामिल है, हर अच्छे नाम को शामिल है, तो इसमें क्या हर्ज है अगर हम सिर्फ अल्लाह अल्लाह करके अल्लाह को पुकारें? हर्ज इसमें यह है, पहली बात यह है कि अल्लाह अल्लाह कहना ये क्या है? जिक्र है, जिक्र इबादत है, और इबादत के लिए दलील होनी चाहिए कि इबादत कैसे करनी है। अब नमाज है, आप रुकू पहले सजदा बाद में क्यों देते हैं? आप पहले सजदा करें फिर रुकू दें फिर रुकू करें, कोई हर्ज है इसमें कि नहीं? हर्ज है ना। क्यों हर्ज है? इसलिए कि जो जो हमें नमाज की तालीम प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चुके हैं वो क्या है? वो यही नमाज है, वकीम उसलात है। और जो जिक्र हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाए वो यही जिक्र है जो हम करते हैं। नमाज भी इबादत है, जिक्र भी इबादत है। जब नमाज अपनी मर्जी से नहीं पढ़ सकते, जिक्र कैसे कर सकते हैं अपनी मर्जी से? नमाज अल्लाह ताला फरमाते हैं बुराई से और बेहूदगी से बचाती है, तन्हा अनिल फहशा व मुनकर। अगर कोई शख्स नमाज पढ़ता है लेकिन वो पहले रुकू फिर सजदा करता है फिर क़याम करता है, यानी उसका आगाज रुकू से करता है वो, या सजदे से आगाज करता है, बैठा है सजदे करता है फिर वो खड़ा होता है फिर रुकू करता है, तो क्या उसके लिए ये नमाज नमाज होगी? अगरचे देखा जाए उसका क़याम भी है, रुकू भी है, सुजूद भी है, अदकार बाकी सारे के सारे ठीक है, लेकिन उसने बाद चीजों को आगे पीछे कर दिया, तरतीब खत्म उसने अपनी मर्जी से तब्दील कर दी है, तो उसकी अब नमाज नमाज नहीं रहेगी उसकी। तो इबादत में कायदे हमेशा याद रखें, अल इबादत तौकीफिया, इबादत में तवक्फ करना फर्ज है, हर मुसलमान पर फर्ज है कि बगैर दलील के कोई भी इबादत हम नहीं कर सकते, और ना ही वो इबादत अगर हम अपनी मर्जी से करते हैं अल्लाह ताला के यहां काबिल कबूल है। यह हर चीज में
2: कोई किसी का मुरीद है उसका नाम अपने नाम से जुड़ा सही है क्या?
0: कोई किसी का मुरीद है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अपन ये मेरे पास जहन से निकल गए, देखिए एक मरीज मेरे पास है उसका नाम है फकीर हुसैन, वल्लाह आ जाए फकीर हुसैन, यानी वो फकीर है किसका? हुसैन का फकीर है। जब वो किसी मुसीबत में मुबतला होता है तो किसे पुकारता है? किसको पुकारता है? नहीं भाई हुसैन को पुकारते, फकीर जो हुसैन का है वो, अगर अल्लाह का फकीर हो तो अल्लाह को पुकारता है ना। हम किसके फकीर हैं? मैं बता रहा हूं आपको, मैंने की बात कर रहा हूं, मैंने की फकीर हुसैन का क्या मायना है? हुसैन का फकीर यानी जब भी वो किसी चीज का मोहताज होगा तो हुसैन उसे देने वाला है, हुसैन उसे देने वाला है। गुलाम हुसैन, हुसैन का बंदा, गुलाम रसूल, रसूल का बंदा, अच्छा गुलाम नबी, नबी का बंदा, नबी बख्श जिसे नबी ने बख्शा हो, गौस बख्श जिसे गौस ने बख्शा हो, ये सारे के सारे नाम गलत हैं और बेबुनियाद हैं। ये नाम तब्दील होने चाहिए, दुरुस्त नहीं है। गुलामी गुलामी सिर्फ अल्लाह खुदा बख्शी के अल्लाह ताला के नाम से, रब ही बख्शने वाला है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं इंशाल्लाह। अरबी में देखें जरा, अब्दुल्लाह, अब्दुल रहमान, अब्दुल करीम, अब्दुल अजीज, कितने प्यारे नाम हैं। अगर मोहम्मद, अहमद, एक एक नाम है। अब्द रब रसूल, अब्द रसूल नहीं होगा कहीं भी देख लें आप, रसूल के रब का बंदा, रसूल का बंदा नहीं है। तो ये जो मायानी है ये अल्लाह ताला का हक है, ये जो नाम है, अगर आप ये समझते कि मेरा नाम गुलाम रसूल है और मैं जो है इबादत सिर्फ अल्लाह ताला करता हूं और पुकारते सिर्फ अल्लाह ताला को, तो फिर अपने नाम को भी दुरुस्त करना चाहिए।